एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योतिको यो प्रस्तुतिका प्रायोजक शुद्धताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हरेक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा।

0: Giorgi.
1: अध्यात्म ज्योति, अध्यात्म ज्योति.

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: भजन सुमिरन सुमिरन अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड न्यू रोड।

एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

ऐकून रेडिओ अध्यात्म ज्योती हस्तो आवाज।

जो भी है, वो जो भी है।

0: अध्यात्म ज्योतिको अबको प्रस्तुति कार्यक्रम ओशो प्रवचन ओशो सन्देश।
1: दुनिया में लोग दूसरों को दुखी देख के मजा लेते, इसलिए मुनियों साधुओं तपस्वियों के पास दुष्ट प्रकृति के लोग इकट्ठे हो जाते। वो कहते महाराज गजब कर रहे, कांटों पे लेटे भीड़ लगा लेते, धूप में खड़े हैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है और गुरुदेव आप धुनी रमाए बैठे, आग जला के ताप रहे, गजब। ये जो लोग हैं इनको मनोविज्ञान में एक खास शब्द है, वो कहते हैं मैसोचिस्ट। ये पर दुखवादी है, ये दूसरा सतारा है अपने को, इसमें इनको मजा आता है। ये वैसे ही लोग हैं जैसे कोई आदमी अपने शरीर में घाव कर ले और छुरी से घाव को कुरेदता रहे और ये कहें वाह आप बड़ी महासाधना कर रहे हैं, आपका जुलूस निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, पर्युषण में आपने 10 दिन व्रत किए उपवास किए शोभा यात्रा निकालेंगे, भूखे रहे आप महीने भर बड़ा उपवास किया आप महातपस्वी। तुम दुख दो अपने को और दूसरे लोग तुम्हें आदर देते, जरूर इसमें कुछ राज है। जब वे तुम्हें आदर देते तुम अपने को और दुख देने को राजी हो जाते, क्योंकि अहंकार की तृप्ति होती और उनकी भी जरूर कोई तृप्ति हो रही। लोग जासूसी किताबें पढ़ते हैं क्यों? लोग जाके हत्याओं की फिल्म देखते हैं, डकैतियों की फिल्म देखते हैं क्यों? तुमने कभी पूछा रास्ते पे दो आदमी लड़ रहे हो तत्काल भीड़ खड़ी हो जाती, तुम्हारी मां बीमार है दवा लेने जा रहे थे साइकिल टिका के किनारे तुम भी खड़े हो गए, मां समझे मां की दवा में क्या है, घंटे दो घंटे की देर भी होगी चलेगा, मगर ये तमाशा छोड़ा नहीं जा सकता। और दो आदमी बिल्कुल लड़ने मारने को तैयार है, तुम्हारी भी उत्सुकता बढ़ती जाती कि अब कुछ होता ही है, अब कुछ होने वाला है, और अगर संयोग से कुछ ना हो तो तुम बड़े उदास लौटे हो, तुमने ख्याल किया है? कुछ ना हो वो दोनों आदमी का, अच्छा भाई क्या फायदा लड़ने झगड़ने से, एकदम गांधीवादी हो जाए कि चलो महात्मा गांधी की जय, क्या फायदा, हम तुमको मारे तुम हमको मारो, कोई सार नहीं। तो जितनी भीड़ खड़ी है वो उदास लौटेगी कि कुछ भी नहीं हुआ, घंटा भर खराब हुआ, गाली गलौज काफी बकी गई। लोग दूसरे के दुख में एक तरह का रस लेते और दूसरे के सुख से पीड़ित होते हैं। तुमने देखा तुम बड़ा मकान बनाओ पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाता, तुम सुखी दिखाई पड़ो किसी को सुख नहीं होता, तुम स्वस्थ हो किसी को अच्छा नहीं लगता, तुम खाते पीते मजे से जी रहे हो तुम्हारे घर संगीत होता है नाच होता है सारा गांव तुम्हारे दुश्मन हो जाता है, गरीब भोगी है भ्रष्ट नरक जाएगा, और तुम भूखे मरो धूप में बैठ जाओ घाव बना लो सारे गांव की दया और सहानुभूति तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर में आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते, वो कहते हैं बड़ा बुरा हो गया, और तुम्हारा घर बड़ा हो जाए और एक नई मंजिल बन जाए कोई नहीं आता कहने के बड़ा अच्छा हो गया। जरा सोचना जब अच्छा होता है कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हो गया, और जब बुरा होता तब लोग कहने आते हैं कि भाई बहुत बुरा हो गया, मगर जब वो कहते हैं बहुत बुरा हो गया तब उनकी आंखों में झांकना तुम पाओगे वो रस ले रहे हैं सहानुभूति में मजा आ रहा, तुम आज नीची हालत में हो, आज तुम पर दया करने का मौका मिला, ये मौका कभी मिला नहीं था, तुम कभी बुरी हालत में थे नहीं, आज तुम चारों खाने चित्त पड़े हो, आज कोई भी दया कर सकता, राह चलता राहगीर कह सकता भाई बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके भीतर देखो कुछ मजा ले रहा है। मनुष्य का मन बड़ा जटिल है। ये 5 भिक्षु बुद्ध की सेवा में रत रहे, लेकिन जब बुद्ध ने सब उपवास छोड़ दिया तप छोड़ दिया, इन्होंने बुद्ध को छोड़ दिया, इन्होंने कहा ये भ्रष्ट हो गया, गौतम भ्रष्ट हो गया, अब ये काम का नहीं रहा, ये पतित हो गया। जब तक ये गौतम अपने को सता रहा था महातपस्वी था, जिस दिन बुद्ध ने ये सब व्यर्थ मूढ़ता छोड़ दी, ये आत्महिंसा छोड़ दी, ये आत्मघात छोड़ दिया, उसी दिन 5 भिक्षुओं ने उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा अब हमारे काम के ना रहे, अब हम कोई दूसरा गुरु खोजेंगे, वो उन्हें छोड़ के चले गए। उसी रात बुद्ध को ज्ञान हुआ, जिस सांझ को 5 भिक्षु छोड़ के चले गए उस रात बुद्ध को ज्ञान हुआ। दूसरे दिन सुबह बुद्ध को पहली याद यही आई कि वो बेचारे पांच इतने दिन मेरे साथ रहे और आखिरी घड़ी छोड़ के चले गए। अब जबकि मेरे पास देने को कुछ था, लेने वाले नहीं, और जब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं था, मैं खुद ही मूढ़ता और अंधकार से भरा था, तब वो मेरे पीछे लगे रहे। ऐसी उल्टी दुनिया है। इसलिए बुद्ध उनकी खोज करते हुए निकले कि वो जहां भी गए हों उनको जाके पहला संदेश उनको दिया जाए। यद्यपि वो मुझे त्याग गए हैं, यद्यपि उन्होंने मान लिया कि मैं भ्रष्ट हो गया, लेकिन मेरे साथ बहुत दिन रहे, इतना कर्तव्य मेरा है कि पहला संदेश उन्हीं को दूं। इसलिए बुद्ध ने पहला प्रवचन उन्हीं पांच भिक्षुओं को दिया। उनका पीछा करते बुद्ध सारनाथ तक आए। जहां जहां पता चला कि वो दूसरे गांव चले गए, बुद्ध वहां गए। सारनाथ जाके उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे पांचों भिक्षुओं को बैठे हुए। उन पांचों भिक्षुओं ने देखा बुद्ध को आते हुए, वो बोले कि भ्रष्ट गौतम आ रहा, हम इसको नमस्कार ना करें, ये नमस्कार के योग्य भी नहीं, ये बिल्कुल पतित हो गया। तो वो पीठ करके बैठ गए। बुद्ध जब उनके पास गए, जब पास जाके खड़े हो गए, और बुद्ध ने कहा एक बार मेरी तरफ तो देखो, जिसे तुम छोड़ आए थे मैं वही नहीं हूं, आज जो आया है कोई और है, एक बार मेरी तरफ देखो। और उन चारों ने, पांचों ने आंख उठा के बुद्ध की तरफ देखा। पहले एक उनके चरणों में गिरा, फिर दूसरा, फिर पांचों उनके चरणों में गिरे, क्षमा मांगने लगे कि हमें क्षमा कर दें, हमने तो सोचा कि भ्रष्ट गौतम आ रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि सब रूपांतरित हो गया, ज्योति का उदय हुआ है, तुम प्रकाशित हो गए। कैसे प्रकाशित हुए, हमें राह बताओ। बुद्ध ने कहा इसीलिए आया हूं। यह घटना सारनाथ जाते हुए रास्ते पर घटी। भगवान सर्वप्रथम ऋषिपतन मृगदाय में पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए उरुवेला से काशी की ओर आ रहे थे। मार्ग में उन्हें एक उपक आजीवक मिला। आजीवक एक संप्रदाय था उस समय का, जो अब विनष्ट हो गया। बुद्ध और जैन दोनों संप्रदाय आजीवक संप्रदाय से बहुत मिलते जुलते, उसी की छायाएं इन पर, उसी के प्रतिबिंब है, उसी की ध्वनियां हैं। आजीवक संप्रदाय का एक भिक्षु मिला, उसने बुद्ध को देखा, वो चकित हो गया। ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था, ऐसा ज्योतिर्मय, ऐसी शुद्ध इंद्रियां, ऐसी निर्मल आंखें, ऐसी निर्मल छाया, ऐसा चारों तरफ शांति का वातावरण। उसने कहा आवुस, तेरी इंद्रियां परशुद्ध और बड़ी विमल हैं, तुम किस उद्देश्य से संन्यास्त हुए थे, अपना उद्देश्य मुझे भी बताओ, मैं भी खोज रहा हूं, कौन तुम्हारे गुरु, कौन तुम्हारे शास्ता, मैं भी खोज रहा हूं, मुझे अब तक ठीक गुरु नहीं मिला, ठीक मार्ग नहीं मिला।

बुद्ध का परम संदेश, क्योंकि जो मिलना है वो तुम्हारे भीतर पड़ा है, कोई दूसरा थोड़ी देने वाला है। हस्तांतरण नहीं होता सत्य का, तुम्हारे भीतर पड़ा है। गुरु अगर कुछ करता है तो इतना ही कि तुम्हारे भीतर जो पड़ा है उसको ही पुकारता है, उसे तुम स्वयं भी पुकार सकते हो। गुरु अनिवार्य नहीं है बुद्ध के मार्ग पर, तुम स्वयं न पुकार सको तो उसकी जरूरत है, तुम स्वयं अपने को असमर्थ पाओ तो उसकी जरूरत है, अन्यथा तुम स्वयं भी पुकार सकते हो, क्योंकि खदान तुम्हारे भीतर है, तुम स्वयं भी खोज सकते हो। गुरु तुम्हें धन देगा नहीं, सिर्फ इतना ही कह देगा कि इस तरह मैंने अपने भीतर खोदा, इसी तरह तुम भी अपने भीतर खोद लो, मगर जो है तुम्हारे भीतर है, जो है तुम्हारे स्वभाव में छिपा है, जो है उसे तुम लेकर ही आए हो, वो तुम्हारा जन्म सिद्ध स्वभाव सिद्ध अधिकार है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने गुरुओं के द्वारा नहीं पाया, मेरा कोई आचार्य नहीं, मेरा कोई उपाध्याय नहीं। ऐसा नहीं कि मैं गुरुओं के पास नहीं रहा, रहा लेकिन वहां मुझे कुछ मिला नहीं, और जब मिला तब मैं किसी गुरु के पास नहीं था, और जो मैंने पाया है वो कुछ ऐसा है कि अब मैं तुमसे कह सकता हूं कि उसे किसी और के पास लेने जाने की जरूरत नहीं, अपने भीतर ही चले जाओ तो मिल जाए। शास्त्रों में नहीं है, स्वयं में है, शब्दों और सिद्धांतों में नहीं, तुम्हारी चेतना में बसा है। तुम मंदिर हो, परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है। मैं सभी को परास्त करने वाला हूं, बुद्ध ने कहा मेरे जितने शत्रु थे वे सब गए, मैं सब जानता हूं, जो जानने योग्य है वो मुझे दिखाई पड़ गया है, मैं सभी धर्मों तृष्णा इत्यादि से मुक्त हो गया हूं, अलिप्त हो गया हूं, सर्व त्यागी हूं। सर्व त्यागी का अर्थ होता है मैंने त्याग को भी त्याग दिया है, मैं सब धर्मों से मुक्त हो गया हूं, मैंने जगत की तृष्णा तो छोड़ ही दी है, मोक्ष की तृष्णा भी छोड़ दी, मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है, मैं अब बिल्कुल निरुद्देश्य हूं, जैसे फूल खिलता निरुद्देश्य, जैसे सुबह सूरज निकलता निरुद्देश्य, ऐसा मैं निरुद्देश्य हूं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं, सब लक्ष्य गए, सब उद्देश्य गए, सब भविष्य गया, मेरी कोई वासना नहीं, मोक्ष की भी नहीं, मैं तृष्णा के नाश से मुक्त हूं। ये बड़ा अजीब वचन, बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं तृष्णा से मुक्त हूं, बुद्ध कहते हैं मैं तृष्णा से तो मुक्त हूं ही, मैं तृष्णा के नाश से भी मुक्त हूं। तृष्णा तो गई ही, अतृष्णा भी गई, नहीं तो उल्टा हो जाता है। संसार पकड़े थे पहले, फिर संसार तो छोड़ दिया, फिर संन्यास पकड़ लिया, मगर पकड़ कायम रही। धन पकड़े थे पहले, धन तो छोड़ दिया, अब निर्धनता पकड़ ली, मगर पकड़ जारी रही। बुद्ध कहते हैं परम त्याग तो तब है जब त्याग भी छूट जाए, परम संन्यास तो तब है जब संसार तो छूटे ही छूटे, संन्यास से भी मुक्ति हो जाए, नहीं तो वो भी पकड़ बन जाए तो कुछ फायदा ना हुआ। मुट्ठी पूरी खुल जानी चाहिए, मैं तृष्णा से मुक्त, तृष्णा के नाश से मुक्त हूं, मैं स्वयं ही विमल ज्ञान को जानकर जागा, मैं किसको गुरु कहूं। और इतना ही नहीं, वो कहते कि मैं किसको गुरु कहूं, वो कहते मैं किसको शिष्य सिखाऊं, न मैंने किसी से पाया, मैंने अपने भीतर पाया, तो जो मेरे पास आएंगे वो भी अपने भीतर ही पाएंगे, शिष्य कहने से क्या सार है। इसलिए बुद्ध ने कहा मैं मित्र हूं, न तो गुरु तुम्हारा न तुम मेरे शिष्य, मैं मित्र हूं। और बुद्ध ने कहा कि मेरा जो भविष्य में पुनः आगमन होगा, मेरा नाम होगा मैत्रेय, तब मैं परिपूर्ण मित्र रूप में प्रकट होऊंगा। अंतिम दृश्य, एक बार देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दानों में कौन दान श्रेष्ठ है, रसों में कौन रस श्रेष्ठ है, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ है, और तृष्णा छह को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका।

0: देवताओं ने सबसे पूछने के बाद इंद्र से पूछा, वह भी इसका उत्तर न दे सका। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने जेतवन में जाकर भगवान के पास आयन प्रश्नों को पूछा। भगवान ने कहा, धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर प्रश्न बहुत नहीं है, एक ही है। सोचने मात्र से समाधान नहीं होगा, जागो, जागने में समाधान है, धर्म के अनुभव में समाधान है। सब व्याधियों के लिए एक ही औषधि है धर्म। तब उन्होंने ये सूत्र कहा, सब्वदानम धम्मदानम जिनाति सब्बम रसम धम्म रसो जिनाति सब्बम रति धम्म रति जिनाति तणक्यो सब दुखम जिनाति। धर्म का दान सब दानों में बढ़कर है, धर्म रस सब रसों में प्रबल है, धर्म में रति सब रतियों में बढ़कर है, और तृष्णा का विनाश सारे दुखों को जीत लेता है, और धर्म की उपलब्धि उससे होती, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। पहले इस दृश्य को हृदयंगम कर लें। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा, देवताओं के पास कुछ और काम है भी नहीं, व्यर्थ की बकवास, देवता करेंगे भी क्या, काम तो वहां कुछ बचता नहीं, काम तो समाप्त हो गया। कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती, देवता सुख ही सुख में जीते, जीवन का बाहर का व्यवसाय तो बंद हो जाता है। जब बाहर का व्यवसाय बंद हो जाता तो चित्त के सब व्यवसाय शुरू हो जाते, तब बड़ा सोच विचार उठता, बड़े विवाद उठते। ख्याल करना, दर्शन शास्त्र तभी पैदा होता है जब पेट ठीक से भरा हो। भूखे भजन न हो गोपाला, भूखे भजन हो भी नहीं सकता। जीवन की सीढ़ियां, शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन की जरूरतें पैदा होती, शरीर की जरूरतें अधूरी रहें तो मन की जरूरतें कभी पैदा नहीं होती। अब कोई भूखा मर रहा है, उसको तुम कहो कि ये विथोवन का संगीत सुनो, वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा। वो कहेगा, मैं भूखा मर रहा हूं, विथोवन का संगीत आप कह क्या रहे, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और भूखे पेट में विथोवन का संगीत जाएगा कैसे, भूखा संगीत सुन कैसे सकता है। कोई भूखा मर रहा है और तुम कहते हो पढ़ो कालिदास की कविताएं, इनसे बड़ा आनंद आया। वो कहता है कुछ रोटी मिल जाए, कालिदास आप पढ़ो, रोटी मुझे दे दो। एक सीढ़ी है, शरीर की जरूरत पूरी हो तो मन की जरूरत, मन की जरूरत में काव्य है, संगीत है, कला है। फिर मन की जरूरतें पूरी हो जाएं तो आत्मा की जरूरतें पैदा होती। जिसने अभी संगीत नहीं सुना और जिसने काव्य का रसास्वादन नहीं किया, वो धर्म के जगत में प्रवेश न कर सकेगा। और जिसने अभी दर्शन शास्त्र के ऊहा पोह में नहीं उलझन ली, नहीं डोला, वो भी धर्म में प्रवेश नहीं कर सकेगा। धर्म आखिरी जरूरत है, धर्म अंतिम है, वो आत्मा की जरूरत है। इसलिए जब कोई देश समृद्ध होता है तो धार्मिक होता है, जब कोई देश गरीब हो जाता है अधार्मिक हो जाता है। इसलिए भारत जैसे देश की अभी धार्मिक होने की संभावना नहीं, अभी भारत के कम्युनिस्ट होने की संभावना है, धार्मिक होने की संभावना नहीं। इसलिए लोग हैरान भी होते हैं, पश्चिम से लोग आ रहे हैं पूरब में तलाश करते धर्म के, पूरब के लोग हैरान होते हैं कि मामला क्या है, पूरब के लोग पश्चिम जा रहे हैं, कैसे अच्छी इंजीनियरिंग आ जाए, कैसे अच्छे डॉक्टर हो जाएं, कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे विज्ञान, इसके लिए पश्चिम जा रहे हैं। पूरब के सोच विचारशील लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं कि एक डिग्री पश्चिम से और ले आएं, और पश्चिम से लोग डिग्रियां इत्यादि फेंक कर कूड़े करकट में डाल के, यहां मेरे सन्यासियों में कम से कम 20 PhD, तुम एक को भी ना पहचान पाओगे कि आदमी PhD। यहां कम से कम 50 MA, तुम एक को भी ना पहचान पाओगे, और ऐसा तो बहुत कम है कि ग्रेजुएट कोई ना हो, मगर तुम एक को ना पहचान पाओगे, सब कचरे में डाल के चले आए। दो कौड़ी की हो गई बात है। यहां कोई पीएचडी हो जाता तो अखबारों में खबर छपती, जुलूस निकाला जाता। मैंने सुना इलाहाबाद में जब पहला आदमी मैट्रिक हुआ था तो हाथी पर बैठ के जुलूस निकाला गया। यहां कोई आदमी पश्चिम पढ़ने जाता तो अखबारों में खबर निकलती जैसे कोई भारी घटना घट रही कि वो पश्चिम पढ़ने जा रहे। पश्चिम पूरब की तरफ आ रहा क्योंकि पश्चिम अब संपन्न है, उसने शरीर का सुख जाना, मन के सुख जाने, अब आत्मा की पीड़ा उठनी शुरू हुई। इस बात की बहुत संभावना है कि भविष्य में पश्चिम पूरब हो जाए और पूरब पश्चिम हो जाए। इस बात की बहुत संभावना है कि सूरज पश्चिम से उगे और पूरब में डूबे। देवताओं के पास कुछ और तो काम नहीं, इसलिए अक्सर ऐसी बहुत कहानियां आती बौद्ध शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में। देवताओं में बड़ा विवाद उठता है छोटी छोटी बात पर, हालांकि देवता उत्तर किसी बात का भी नहीं पा सकते क्योंकि सब बुद्धि का खिलवाड़, आत्मिक अनुभव नहीं। स्वर्ग में आत्मिक अनुभव नहीं घटता, नहीं घट सकता। सुखी आदमी आत्मा का चिंतन शुरू करता है मगर चिंतन में ही अटका रहता है। सुखी आदमी को चिंतन से आगे जाना पड़े, अनुभव में, साधना में। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा, दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा छह को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। ये मत समझना कि उत्तर लोगों ने नहीं दिए, उत्तर तो दिए होंगे, हजार उत्तर दिए होंगे, लेकिन कोई भी उत्तर उत्तर नहीं था। तुम ये मत सोचना कि देवता बिल्कुल बुद्धू है, क्योंकि तुम ये कहानी पढ़ोगे तुमको लगेगा अरे हम ही उत्तर दे सकते, इसमें देवता उत्तर नहीं दे सके। ये तो बात कुछ जस्ती नहीं। तुमसे कोई पूछे दानों में कौन दान श्रेष्ठ, तुम भी कुछ उत्तर दोगे, सही गलत की बात। और उत्तर तो दिए गए होंगे लेकिन कोई उत्तर समाधान कारक नहीं था। कोई उत्तर ऐसा नहीं था कि उसको सुनते ही चित्त शांत हो जाए, उसको सुनते ही सत्य का अनुभव हो जाए, उसको सुनते ही, श्रवण करते ही चित्त का विकल्प जाल टूट जाए और लगे कि हां यही ठीक है। कोई ऐसा सत्य नहीं खोजा जा सका जो स्वयं सिद्ध मालूम पड़ा हो। तब देवताओं ने इंद्र से पूछा, इंद्र है देवताओं का राजा, सोचा शायद इंद्र को पता हो। वह भी इसका उत्तर न दे सका, नहीं कि उसने उत्तर न दिए होंगे, जरूर उत्तर दिए होंगे। उत्तर तो कोई भी देता है, तुम गधे से पूछो वो भी उत्तर देगा, तुम जरा किसी से भी पूछो, कोई भी बात पूछो, उसे पता हो कि ना हो मगर वो उत्तर देगा। उत्तर देने का मौका कोई नहीं चूकता, क्योंकि ज्ञानी बनने का मौका मुफ्त में कौन चूके। किसी से भी पूछो, जिन बातों का उन्हें कोई अनुभव नहीं, ऐसा आदमी तुम्हें मुश्किल से मिलेगा जो कहेगा मुझे पता नहीं। ऐसा आदमी मिले उसके चरण पकड़ लेना, क्योंकि उस आदमी में कुछ सच्चाई है, नहीं तो हर एक उत्तर दे रहा है। कुछ भी पूछे जाओ उत्तर दे रहा है, कुछ पता नहीं और उत्तर दे रहा है। जिन्होंने खुद कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया वो हर एक को सलाह दे रहे हैं। जो अपनी सलाहों पर कभी नहीं चले, मौका आ जाए फिर भी नहीं चलेंगे, वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं। यहां अंधे अंधों को मार्ग दिखा रहे हैं, और इसलिए सारे लोग गड्ढों में पड़े, नेता भी और अनुयायी भी। इंद्र ने भी उत्तर दिया होगा, राजा है देवताओं का, ऐसे स्वीकार तो नहीं कर लिया होगा कि मुझे पता नहीं। पहले तो अकड़ के बैठा होगा, सिंहासन पर कहा होगा अच्छा सुनो, सब समझाया होगा, मगर कोई तृप्त नहीं हुआ। मजबूरी में बुद्ध के पास आना पड़ा। उत्तर तो बुद्धों के पास ही है, बुद्धत्व में ही उत्तर है, जागे हुए में ही उत्तर है, जो भीतर ज्योतिर्मय हुआ है उसी के पास उत्तर है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर हैं। तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं है। तुम पूछते हो दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा छह को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है, यह कोई अलग अलग प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है और एक ही इनका उत्तर है। मगर सोचने मात्र से समाधान न कभी हुआ है न होगा, जानने से समाधान होता है, दर्शन से समाधान होता है, अनुभव से समाधान होता है। सब व्याधियों की एक ही औषधि है, बुद्ध ने कहा जागो, मेरे जैसे हो जाओ, जैसे मैं जागा ऐसे तुम जागो, जागते ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और क्या उत्तर है इन प्रश्नों के, तो बुद्ध ने कहा धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धन देने से क्या होगा, धन से तुम्हें ही कुछ नहीं मिला तो दूसरे को देने से क्या होगा। धन देने का मतलब ही यह है कि तुमने तो पाया कि कचरा है, अब तुम दूसरे पे टाल रहे हो। धर्म के दान से, धर्म दान क्या, पहले तो धर्म को पाओगे तभी तो दान कर सकोगे ना, जो तुम्हारे पास नहीं उसका दान कैसे करोगे। धन हो तो धन का दान कर सकते हो, धर्म हो तो धर्म का दान कर सकते हो। धर्म भीतर का धन है, धर्म आत्म धन है। पहले धर्म को पालो, फिर उसे बांटो, फिर जो भी धर्म के लिए प्यासा दिखे उसमें उंडेल दो, तुम जागो और दूसरों को जगाओ। धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ, और धर्म रस सब रसों में प्रबल है। संगीत में थोड़ा सा रस है, क्यों, क्योंकि संगीत में भी थोड़ी सी तन्मयता हो जाती है। संभोग में भी थोड़ा रस है, क्योंकि संभोग में भी क्षण भर को तन्मयता हो जाती, मगर धर्म रस में सदा को तन्मयता हो जाती। गए सो गए, फिर कोई लौटता नहीं, डूबे सो डूबे, एक रस हो जाते हो परमात्मा में। संभोग में जिससे तुम्हारा प्रेम है क्षण भर को एक रस होते हो, फिर अलग हो गए, और फिर अलग होने की पीड़ा और भयंकर हो जाती। संगीत थोड़ी देर को कानों को मीठा लगता है, फिर संगीत चला गया, फिर शोरगुल है जगत का। शराब पी ली, थोड़ी देर को तन्मय हो गए, फिर नशा उखड़ेगा। धर्म ऐसा नशा है जो एक दफे हुआ तो फिर उखड़ता नहीं, पिया सो पिया। और धर्म ऐसा नशा है कि बेहोशी भी लाता है और होश को नष्ट नहीं करता, होश को बढ़ाता है। धर्म अद्भुत नशा है, होश और बेहोशी साथ साथ पैदा होते, एक तरफ मस्ती छा जाती और एक तरफ परम होश भी होता है। तो धर्म रस सब रसों में बढ़कर, और धर्म में रति सब रतियों से बढ़कर है। प्रेमों में सबसे बड़ा प्रेम है धर्म से प्रेम, रतियों में सबसे बड़ी रति है धर्म रति। स्त्री के साथ थोड़ी देर खेलो थोड़ा सुख है, पुरुष के साथ थोड़ी देर खेलो थोड़ा सुख है, रति क्रीड़ा। लेकिन परमात्मा के साथ खेल लो सदा के लिए, धर्म रति बुद्ध कह रहे हैं उसको। अस्तित्व के साथ संभोग रत हो जाओ, अस्तित्व के साथ एक हो जाओ, फिर कोई अलग ना कर सकेगा। क्यों, क्योंकि अस्तित्व के साथ वस्तुतः हम एक ही हैं, हमने अलग मान लिया वह हमारी भ्रांति, उसी भ्रांति के कारण दुख है। भ्रांति गिर जाए फिर सुख ही सुख है। और तृष्णा का विनाश सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि तृष्णा के विनाश से ही धर्म उपलब्ध होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं, एक ही प्रश्न है, और मेरा उत्तर भी एक है, एक शब्द में धर्म। एस धम्मो सनंतनो। आज इतना ही।
1: हवस्त आदरणीय श्रोता, आजको यो प्रवचन श्रृंखला यति नै, यसको बाँकी अंश आगामी कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।

Joe B. Have a Joe B.

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा गाने और साथ ही इन गानों से जुड़े आर्टिस्ट के किस्से और कहानियां लेकर आई हूँ। वैसे आज की मेरी प्लेलिस्ट की बात करें तो ये है उस ट्रायो पर जिसने लावारिस, टॉन, मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई हिट फिल्मों में गाने दिए। ये ट्रायो है म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी, सिंगर किशोर कुमार और एक्टर अमिताभ बच्चन जी का। इस ट्रायो ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिड 70s के टाइम पर कमाई थी, क्योंकि ये वो दौर था जब अमित जी का करियर ग्राफ आसमान छू रहा था और उनकी मोस्ट ऑफ द हिट फिल्म्स में कल्याण जी आनंद जी का ही म्यूजिक होता था। वैसे अमित जी का एक अलग ही रिश्ता था स्पेशली आनंद जी के साथ। आपको पता है यूजुअली जब भी कल्याण जी आनंद जी अमित जी की मूवीज़ पर काम कर रहे होते थे तो अगर अमित जी इनके घर जा रहे हैं कुछ मुलाकात करने, मीटिंग वगैरह पर बैठने, तो जाते से ही पहले वो आनंद जी की पत्नी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे, उसके बाद ही काम की शुरुआत करते थे। और जहाँ तक किशोर दा और अमित जी के काम और दोस्ती का सवाल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमित जी के लिए बेस्ट प्लेबैक अगर किसी ने दिया है तो वो किशोर दा ही हैं। वैसे तो किशोर दा राजेश खन्ना जी की ऑन स्क्रीन वॉइस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि किशोर दा ने 8 बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर के जो अवार्ड्स जीते हैं उनमें से 3 अमित जी पर ही फिल्माए हुए गानों के लिए थे। फिलहाल चलिए सुनाते हैं आपको अमित जी की उस फिल्म से गाना जिसने उन्हें एक स्टाइल आइकॉन बना दिया था। मैं बात कर रही हूँ लावारिस फिल्म की। चलिए सुनाते हैं आपको इसी फिल्म से कल्याण जी आनंद जी की कॉम्पोजिशन और किशोरदा की आवाज में अमित जी का हिट गाना अपनी तो जैसे तैसे। सुनते रहिए मेरे यानी रुचि के साथ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई
2: फ्रॉक
3: मलाई पनि सूट
4: अनि मलाई

0: ರಸಾವೇಲ್ ಸುಚ್ಚೆಪಾಟಿ
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
5: FM AJ 104.8

0: 数。
1: मैं हूं रुचि आपके साथ। वैसे पुराने एक्टर्स और आर्टिस्ट के आज इस लिस्ट में से अमित जी, कल्याण जी, आनंद जी और किशोर दा के ट्रायो के गीत मैं आपको सुना रही हूँ। जानते हैं पहले जमाने में गानों की इंस्पिरेशन कई बार म्यूजिक डायरेक्टर्स अपने एक्टर्स से ले लिया करते थे, यानी कि उस एक्टर की अदाएं कैसी हैं, उस एक्टर का मिजाज कैसा है, उस हिसाब से वो अपने गाने जो है वो ढाल लिया करते थे। और कई बार उल्टा भी होता था। एक्टर्स की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए ये फिल्म मेकर्स कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स की पर्सनालिटी देख करके उनके ऊपर भी बेस कर लेते थे। बताती हूँ आपको माजरा क्या है। डॉन फिल्म का अवार्ड विनिंग सॉन्ग तो आपको याद ही होगा, खाई के पान बनारस वाला। क्या आपको पता है इस फिल्म के डायरेक्टर चंद्र भरोट जी को म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी से इसकी इंस्पिरेशन मिली थी, क्योंकि वो बहुत सारा पान खाया करते थे, हमेशा ही पान ही चबाते रहते थे और उनके होंठ इसीलिए लाल हो जाते थे। किशोर दा ने असल में ये गाना गाते हुए कुछ 40 पान खाए थे ताकि अमित जी ऑन स्क्रीन जब वो परफॉर्मेंस दे रहे हों तो उनके लुक को लेकर के जो आवाज है किशोर दा की वो मैच हो सके। उसी के साथ दिलचस्प बात यह भी है कि यह गाना जो है वो एक्चुअली अमित जी के लिए बनाया नहीं गया था, बनाया जाने वाला था देवानंद जी की फिल्म बनारसी बाबू के लिए। लेकिन देखिए, समय के साथ जो चीज जिसकी होनी होती है वो उसी की हो जाती है। एक और कहानी इस गाने के पीछे की यह भी है कि जब कल्याण जी, आनंद जी ने इस गाने के लिए किशोर दा से बात की तो किशोर दा को यह गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे गाने को अपनी आवाज कभी भी नहीं दूंगा और इनकार कर दिया। लेकिन फिर कल्याण जी, आनंद जी दोनों ने किशोर दा को आश्वासन दिया, थोड़ा समझाया कि भाई स्थिति के हिसाब से फिल्मों में कई बार अलग अलग किस्म के गाने भी गाने पड़ते हैं और जैसी डिमांड हो तुम्हें वैसे गाने गाने ही पड़ेंगे। किशोर दा ये समझ के कि मेरे सीनियर्स मुझे बोल रहे हैं, मान गए। मन उनका फिर भी ज्यादा था नहीं इस गाने के तरफ, लेकिन फिर भी मान गए। और देखिए, इस तरह खाई के पान बनारस वाला गाना बना और किशोर दा सोच भी नहीं सकते थे कि उनके करियर का ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स बन जाएगा। वैसे किशोर दा हमेशा मेलोडियस गाने गाते थे, तो अमित जी के ऑन स्क्रीन टफ कैरेक्टर के गानों को कैसे उन्होंने जस्टिफाई किया, उनकी आवाज कैसे फिट बैठी उन पर, बताऊंगी ये राज कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले चलिए मैं और आप मिलकर के सुनते हैं यही अगला सुपरहिट गाना, खाई के पान बनारस वाला।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला, हाँ हाँ, अरे कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पड़े

104.8.

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा व उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

रुचि आपके साथ, वेलकम बैक टू द शो। आज मैं आपको म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी, सिंगर किशोरदा और एक्टर अमिताभ बच्चन जी के ट्रायो के गाने सुना रही हूँ। वैसे किशोरदा ज्यादातर राजेश खन्ना जी और देवानंद जी के रोमांटिक मेलोडियस सॉन्ग्स के लिए फेमस थे, लेकिन जब कभी वो हमारे ऑन स्क्रीन एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी के लिए गाया करते थे तो ऐसा लगता था जैसे गाना खुद अमित जी ही गा रहे हों। पता है ऐसा क्यों होता था? क्योंकि किशोरदा अपनी वॉइस को, अपनी आवाज को अमित जी की डीप बैरिटोन वाली आवाज में कुछ इस तरह से मॉड्यूलेट कर लेते थे कि सच में लगता था कि अमित जी ही गा रहे हैं। ऐसा कर पाना सिंगर्स के लिए आसान बात नहीं होती है, क्योंकि सिंगर्स भी चाहते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल आवाज में ही गाएं और उनकी आवाज हिट हो, लेकिन एक फिल्म की डिमांड को, एक एक्टर की आवाज को समझ पाना और उस तरह से हूबहू गा पाना भी एक अलग ही टैलेंट है। भाई मानना पड़ेगा किशोरदा सच में टैलेंटेड तो काफी थे। चलिए फिलहाल सुनाती हूँ आपको अमित जी पर फिल्माया गया किशोरदा का वो गाना जिसे कल्याण जी आनंद जी ने एक प्रिय मित्र से प्रेरित होकर कंपोज किया था। बात यह थी कि उनके एक दोस्त, उनके बड़े ही खास मित्र थे जिनका निधन हो गया था। उनके रिश्तेदार जो कि पहले उन्हें बचाने के बारे में सोच रहे थे, बड़े चिंतित थे उनकी हेल्थ को लेकर के, वो तुरंत उनके अंतिम संस्कार के बारे में चर्चा करने लग गए और ऐसे बिहेव करने लग गए जैसे चलो अब तो सब खत्म हो गया, अब बस सब काम खत्म, अब घर चलो। ऐसा माहौल देख करके, लोगों का ऐसा रिएक्शन, ऐसा बिहेवियर देख करके कल्याण जी आनंद जी दोनों को ही बहुत बुरा लगा था। और यूं ही बैठे बिठाए वो इनका ये जो दोस्त था, वो उन्हें छोड़ के जो चला गया था, उसके लिए इन्होंने ये गाना बनाया था, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। इनफैक्ट यही वो गाना है जिसे सुनकर के मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे अमिताभ जी खुद ये गाना गा रहे हों। किशोरदा ने इतनी बखूबी, इतनी अच्छी तरीके से ये गाना गाया है। तो चलिए सुनाते हैं आपको ये गाना, और उसी के साथ किशोरदा और अमिताभ बच्चन जी, इनकी जोड़ी जब तक चली तो खूब दूर तक चली, लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने बहुत हिट गाने सुने इन दोनों के साथ में। लेकिन जब इनकी जोड़ी टूटी तो किशोरदा और अमिताभ बच्चन जी के फैंस की उम्मीदें भी साथ में बिखर गई थी। ऐसा क्या हुआ था कि दोनों की दोस्ती के बीच दरार आ गई थी, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं यही गाना, ओ साथी रे मेरे, यानी रुचि के साथ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँको।
1: One oh four eight.

मैं हूं रुचि आपके साथ। जानते हैं आप, किशोर कुमार जी ने 1982 से 1987 के बीच में अमिताभ बच्चन जी के लिए गाने गाना बंद कर दिए थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने ऐसा कुछ किया था जिससे कि किशोरदा बुरा मान गए थे। बताती हूँ आखिर हुआ क्या था। किशोरदा ने अपनी एक फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के लिए अमित जी को अप्रोच किया था, कहा था कि तुम बहुत बड़े एक्टर हो, मेरी किसी फिल्म में एक छोटा सा रोल कर दो तो नाम हो जाएगा कि अमिताभ बच्चन भी है इस फिल्म में। अमिताभ जी के पास उस समय टाइम नहीं था, तो उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया, जिसका किशोरदा को बहुत बुरा लगा था। और इसलिए किशोरदा ने कहा कि बस हमारी दोस्ती यहीं तक थी, इसके आगे मैं अमिताभ बच्चन के लिए गाने नहीं गाऊंगा। उस समय अमिताभ जी को लग रहा था कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमित जी के करियर पर इसका असर पड़ा जरूर। आई डोंट नो ये इसलिए था क्योंकि गाने इतने हिट नहीं हो रहे थे, या इसलिए था कि किशोरदा अमित जी की जिंदगी के लकी चार्म थे। लेकिन आने वाले कई सालों तक अमिताभ बच्चन जी की फिल्में चलना बंद हो गई थी। फिर कुछ समय के बाद अमिताभ बच्चन जी और किशोरदा की दोस्ती कराई, कुछ म्यूजिक कंपोजर्स के एफर्ट्स लगे, और उसके बाद किशोरदा ने फिर से अमित जी के लिए गाने गाना शुरू किया था। वैसे जानते हैं आप, अमित जी ने कई बार ये कहा है कि किशोरदा जो गाने राजेश जी और देवानंद साहब के लिए गाते थे वो उन्हें ज्यादा पसंद आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो गाने जो है उनका लेवल ही कुछ और होता था, उच्च कोटि के गाने होते हैं ये, ऐसा खुद अमिताभ बच्चन जी ने कहा था। अमिताभ जी किशोरदा को लेकर के ये भी कहा करते हैं कि जो इंसानियत, जो जज्बा किशोरदा के अंदर उन्होंने देखा, वो आज तक पूरी इंडस्ट्री में उन्होंने किसी के अंदर नहीं देखा। वो कहते हैं कि किशोरदा जाने जाते हैं उनके क्वर्क के लिए, यानी कि किशोरदा कभी भी कुछ भी कर देते थे, कैसे भी बर्ताव करते थे। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि किशोरदा आपकी किसी भी चीज़ के लिए मदद करे, तो वो कितने भी बिजी क्यों ना हो आपके लिए समय ज़रूर निकाला करते थे। वैसे कि आप जानते हैं 1978 में अमित जी ने 4 कमर्शियली हिट फिल्म्स दिए थे एक ही साल में, मुकद्दर का सिकंदर, कस्मे वादे, डॉन और त्रिशूल, और इन सभी फिल्मों में किशोरदा ने ही अमित जी के सभी गाने गाए थे। तो चलिए इसी बात पर डॉन फिल्म से सुनाते हैं आपको अगला गाना मेरे यानी रुचि के साथ। आगे शो पर बताऊंगी कि किशोरदा एक बदतमीजी या एक शैतानी कह लेते हैं, चलिए शैतानी किया करते थे कल्याण जी आनंद जी के साथ। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सुनते रहना पड़ेगा।

रुचि है आपके साथ। आज हम कल्याण जी, आनंद जी, किशोरदा, अमिताभ जी, इन सभी के साथ में बनाए हुए जो गाने हैं वो सुन रहे हैं यहाँ मेरे शो पर, और साथ ही उनकी दोस्ती के कुछ अनसुने किस्से भी सुना रही हूँ मैं आपको। वैसे कि आप जानते हैं, जैसा मैं कह रही थी, किशोर जी कल्याण जी, आनंद जी के काफ़ी करीब थे और इसीलिए उन्हें अपना समझकर अजीब गजीब तरीके का व्यवहार भी कर लिया करते थे। जैसे कि किसी गाने को गाने के बाद वो स्टूडियो से भाग जाया करते थे, फीडबैक भी मिलने से पहले वो बस स्टूडियो से भाग जाते थे, हेडफोन रख करके बस तुरंत भाग लिए, और वो इसलिए करते थे ताकि उन्हें फिर से पूरा की पूरा गाना ना गाना पड़े। अब आप जानते हैं कि उस समय में बहुत सारे रिकॉर्डिंग की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी जैसी अब हैं, यानी कि गायकों को रट्टा मार कर गाना सीखना पड़ता था और उसे एक ही बार में, एक ही टेक में गा देना पड़ता था। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था सिंगर्स के लिए गाने गाना उस समय में, और अगर संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो गाने को फिर से उसी तरह शुरुआत से पूरा की पूरा गाना पड़ता था। लेकिन किशोरदा को ये नामंजूर होता था और वो रिकॉर्डिंग खत्म करते ही भाग लेते थे। वैसे लेजेंडरी सिंगर मुकेश जी के बाद किशोरदा ही कल्याण जी, आनंद जी के फेवरेट थे, और पता है किशोरदा जब कोई अवार्ड जीतते थे तो कल्याण जी, आनंद जी के घर पर ही पार्टी थ्रो करते थे। इनफैक्ट किशोरदा ने अपने खुद के घर में एक झूला बनवाया था, क्योंकि कल्याण जी को झूले बहुत पसंद हुआ करते थे और वो प्यार से उन्हें महाराज भी बुलाया करते थे रिस्पेक्ट देने के लिए। चलिए इसी बात पर बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, सुनते हैं अमित जी की फिल्म कसौटी से किशोरदा की आवाज में ये अगला गाना।

0: कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते।
1: Four eight.

आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। और ये आया पायदान नंबर 30 पर फिल्म हरिश्चंद्र तारामती का वो एक ही सीधा सादा संगीत जिसका जिक्र मैंने एलपी के नाम के साथ यानी लक्ष्मी प्यारे के नाम के साथ अभी कुछ देर पहले किया था।

उस साल की हिट पायदान नंबर 29 पर एक हसीना को देखकर चांद ऐसे शर्माया कि उभरी दूर की आवाज।

गीतकार संगीतकार वही थे जिन्होंने हमें चौदहवीं का चांद हो वाला खूबसूरत गीत दिया था, यानी रवि और शकील बदायूनी। और वही जोड़ा 1964 की पायदान नंबर 28 पर भी चमका, फिल्म थी जिंदगी।

0: फिल्म जिंदगी के डायरेक्टर थे रामानंद सागर और फिल्म के सबसे सीनियर एक्टर थे पृथ्वीराज कपूर साहब, जिनकी मदद से ही सागर साहब ने फिल्मों में शोहरत पाने का पहला कदम रखा था। इसके बारे में सागर साहब ने एक इंटरव्यू में मुझे बताया था।
1: पृथ्वीराज जी मेरे दोस्त थे, यहाँ आने से पहले वो मेरी किताब में पढ़ चुके थे
0: जी,
1: और मैं उनका दिल दादा था, तो उन्होंने मदद करनी चाही
0: जी,
1: तो मैंने कहा कि मुझे कोशिश कर लेने दो।
0: अच्छा,
1: पृथ्वीराज जी ने फिर मुझे एक कहा कि मेरे लिए एक प्ले लिख दो, एक ड्रामा लिख दो।
0: कौन सा प्ले था वो?
1: कलाकार। वहां मेरी राज साहब से मुलाकात हो गई। वो एक किसी अच्छी कहानी की तलाश में थे, एक पिक्चर बनाना चाहते थे बरसात। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास कोई कहानी है? तो मेरे पास एक नावल था जो मैं लिखना चाहता था, उसका खाका तैयार था 30-40 पेज का। मैंने उनको सुनाया कि एक आइडिया है ये, जो उनको बहुत पसंद आया।
0: और उस पर हिट फिल्म बनी बरसात, जिसके जरिए राज कपूर के करीब आ गए रामानंद सागर। और साहब 1964 के बाद तो रामानंद सागर साहब की कामयाबियों का झंडा बस ऊंचा ही ऊंचा चढ़ता रहा। पहले उनकी अपनी फिल्मों में और फिर टीवी सीरियल रामायण के जरिए। खैर वो तो बाद की बात है, अभी तो ये पूछिए कि 1964 के पायदान नंबर 27 पर कौन साहब सवार थे।
2: मुझे कहते हैं मुझे

ये फिल्म थी दूल्हा दुल्हन, जिसके संगीत का शंकर जयकिशन ने तो उस साल कमाल ही कर दिया था साहब। गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी की 32 पायदानों में से 13 पायदानों पर उन्हीं की धुनें थी, और उनके पीछे पीछे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला जोड़ा भी लोकप्रियता की रेस में दौड़ने लगा था, अपने जैसे सारे नए नौजवानों का हौसला बढ़ाते हुए और उन्हें पायदान नंबर 26 पर दोस्ती का गीत सुनाते हुए।

0: साथी है।
1: अच्छा दोस्तों, पिछले पैक के वॉल्यूम नंबर 19 में जब फिल्म जंगली के जरिए सायरा बानू की एंट्री फिल्मों में जो हुई थी उसका जिक्र हुआ था, तब मैं जंगली के बड़े मशहूर डायलॉग राइटर आगा जानी कश्मीरी साहब की आवाज भी आपको सुनवाना चाहता था, मगर मुझे उनके इंटरव्यू का वो टेप वक्त पर मिला नहीं, अब जाकर मिला है। तो जरा सुनिए कि सायरा बानू को डायलॉग बोलना सिखाने में आगा जानी कश्मीरी साहब ने कैसे मदद की।
2: फिल्म आलाया स्टूडियोज में जब जंगली लिखने गया तो क्या देखता हूं कि एक जवान खूबसूरत लड़की नीची नजरें किए मेरी तरफ खिरामा खिरामा बढ़ी चली आ रही है। मैंने कहा आदाब अर्ज़ है, सिर्फ नाजुक सा हाथ उठाकर चांद से माथे पर रखा और कहा आगा साहब आप मुझे डायलॉग सिखाएंगे, मैं जंगली की हीरोइन सायरा बानो हूं। मैंने कहा जरूर। फरमाने लगी लोग तो कहते हैं कि मैं काम नहीं कर सकती, तस्वीर फ्लॉप हो जाएगी।
1: वो जरा नहीं थी ना आगा साहब, उन्हें कैसे पता चलता कि जिस फिल्म में आगा जानी कश्मीरी साहब का कलम लग जाए वो फ्लॉप कैसे हो सकती है।
2: जंगली रिलीज हुई और सायरा बानो टेरिफिक हिट हुई।
1: भाई अगर आप आगा जानी कश्मीरी साहब की लिखी हुई या डायलॉग से संवारी हुई फिल्मों के नाम सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। जैसे पुरानी फिल्मों में हुमायूं, अनमोल घड़ी, औरत, अमर वगैरह, और फिर 50 से शुरू होकर आज के वॉल्यूम के साल यानी 1964 के आते आते चोरी चोरी और जंगली के अलावा लव इन शिमला, ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो, गजल, जिद्दी और अप्रैल फूल, जिसका एक और गीत उस साल नंबर 25 पर बजा। और सुनिए उसमें आगा जानी ट्रेंड सायरा बानू ने दो चार शब्द कैसे मजे में बोले थे। और वैसे वो गीत

अरे बाबा, आजकल तो न जाने कैसे कैसे और कितने कितने लोग जनता को अप्रैल फूल बनाने यानी बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, और इससे कितना नुकसान हो रहा है हर तरफ। तो मैं उन सब से कहूंगा कि भाइयों, झूठ फरेब छल कपट छोड़िए, प्रेम का रास्ता पकड़िए, फिर देखिए कि सारी जनता आपको अपने सीने से लगाकर क्या कहती है आपसे।

0: 1964 की गीतमाला वार्षिक पायदान नंबर 24 पर बजा था फिल्म आपकी परछाइयां का ये गीत। इसके संगीतकार मदन मोहन और गीतकार राजा मेहदी अली खान ने मिलकर ऐसे कई बड़े ही जज्बाती गीत रचे थे, लेकिन इन दोनों में हंसी मजाक और छेड़छाड़ का जो धमाकेदार रिश्ता था ना, उसके बारे में सुनिए कि मुझे मदन भैया क्या बता गए थे।
1: अमीन साहब, खाने पकाने का शौक हम दोनों को था, इसलिए रात का खाना इकट्ठे पकाते थे और खाते थे और उसके बाद काम करते थे
2: जी।
1: रात को जब राजा साहब काम करके चले जाते थे तो मैं देखता था गाना, और सुबह सुबह फिर मैं उनके घर पर पहुंच जाता था।
2: हाँ।
1: और अगर मुझे गाना पसंद ना आता था तो मैं उनकी रसोई में जो एक चिमटा पड़ा हुआ था,
2: चिमटा,
1: वो उठा लेता था। जी हाँ, वही चिमटा उठाकर मैं राजा से कहता कि शाम तक देखो राजा गाना नहीं हुआ तो ये चिमटा जो है ये तुम्हारे बदन पर बरसेगा।
2: अरे बाप रे, अच्छा।
1: और राजा ने मेरा एक नाम चिमटा मार खान भी रखवा दिया था।
2: चिमटा मार खान।
1: सब लोग मुझे श्री राम से पुकारते थे।
0: मगर भाई जब गीतों की बारी आती ना तो मदन और राजा का सारा धूम भड़ाका भावनाओं की गहराई में डूब जाता।

0: कलेक्शन सुन चांदी तथा हीरा जे किन्नुस जे जे ज्वेलर्स के किन्नुस
1: जे जे ज्वेलर्स बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी
2: संपर्क नंबर 5320411 9820076888
0: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान
3: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन
4: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित पसीना सोचने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर
3: जेन्स को लागी पिक्सी सुपर कूल वेस्ट ब्रीफ्स र पिक्सी गिलेक्स वेस्ट लेडीज को लागी पिक्सी फेमिनेक्स कैमिसोल र ब्रोमर
1: पिक्सी फॉर द कंफर्टेबल यू कंफर्टेबल
5: बहनों और भाइयों आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में अच्छा दोस्तों शायद आपके मन की निगाहें इंतजार कर रही होंगी कि आज गीतमाला की छाव में कि अगली प्रतियोगिता यानी अगले कंपटीशन का जिक्र कब आता है। मगर भाई एक तो विजय किशोर दुबे साहब के चले जाने से मेरा मन कुछ बोझल सा हो गया और फिर इस पैक में यानी इस पैक के 5 वॉल्यूम्स में आपको सुनवाने के लिए फिल्मी लोगों के अनोखे इंटरव्यूज और निराली यादों का इतना सारा खजाना हाथ लग गया कि प्रतियोगिता का सिलसिला मैंने अगले पैक तक टाल दिया है। और फिर 1964 के छाव के गीत भी तो बहुत सारे निकल आए हैं, बड़े लाजवाब गीत, ज्यादातर तो बड़े मीठे मधुर मोहब्बत भरे गीत, मगर एक गीत मजेदार मुस्कुराहटों से महकता हुआ है।
6: फुल गेंद वान मारो न मारो लगत करे जवा में चो दुंग में तो हाई कह चतुर बनत ठिठोरी

0: मारो लगत कर जवा में चोट, कर जवा में चोट, कर जवा में चोट।
1: मगर साहब हमारे पास टाइम टाइम टाइम कहाँ है कि हम रुकते रुकते रुकते चले घिसे हुए ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह। और हमें उस साल की छांव भी तो फिर कह रही है कि आओ ना हमारे पास। और अगर

बहनों भाइयों, अगर आपने फिल्म का नाम छपे हुए कवर पर देख लिया है तो आपको याद आ गया होगा कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी लाजवाब था, मगर वो भी सालाना प्रोग्राम तक नहीं पहुंचा था। लेकिन बहनों भाइयों, वो मैं आज नहीं सुनवाऊंगा, आइए बढ़ें आगे। उस साल की छांव में एक बहुत प्यारा गीत उस फिल्म का भी छुप गया था, जिसके हीरो थे कॉमेडियन महमूद। मगर अभी अभी मैंने उस फिल्म की संगीत निर्देशिका उषा खन्ना को फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उस फिल्म शबनम में महमूद ने कॉमेडी के साथ साथ रोमांस भी बड़ा तगड़ा किया था। जी हाँ, हमारे महमूद भाई रोमांस में भी तो उस्ताद थे, यानी जिंदगी में भी।

बहन और भाइयों, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी फिल्म में एक दूजे के साथ रोमांटिक रोल करने के बाद हीरो और हीरोइन में प्यार हो गया और फिर दोनों की शादी भी हो गई। एक फिल्म उस साल आई थी शगुन, जिसकी हीरोइन थी हसीन वहीदा रहमान और नए हीरो थे कमल जीत। और शूटिंग के दौरान कमल जीत वहीदा को अपना दिल दे बैठे। भाई मैंने फिल्म शगुन तो देखी नहीं थी, मगर उसके गीत इतने प्यारे थे कि सुनकर किसी का भी प्यार जाग जाए। और इस गीत का तो लगता है कि सीन भी बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही रोमांटिक होगा।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ।
1: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था ना कि फिल्म शगुन के बनते बनते हीरोइन वहीदा रहमान पर नए हीरो कमलजीत फिदा हो गए। मगर आप जानते हैं बहनों भाइयों, उस रोमांस को शादी तक पहुंचने में 10 साल लग गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी देर क्यों लगी है? भाई ये मैं कैसे बताऊं, आप खुद वहीदा रहमान से सुन लीजिए ना।
2: मैं और कमलजीत ने एक फिल्म में काम किया था, वो फिल्म का नाम था शगुन। उसके बाद उन्होंने फिल्म में छोड़कर कनाडा चले गए थे अपने बिजनेस के लिए, मगर हर साल हिंदुस्तान आया करते थे और जब भी आया करते थे मुझसे ज़रूर मिलते थे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मगर शादी से 6 महीने पहले उनको बॉम्बे आना पड़ा और एक साथ 6 महीने उनको रहना पड़ा। उस दौरान में वो अक्सर मिला करते थे मुझसे। एक दिन अचानक आके कहने लगे, देखिए मैं आपको बहुत बरसों से जानता हूँ और मैंने सोचा है कि बड़े शर्मा के कहने लगे। हाँ, मैंने कहा कहिए क्या सोचा है आपने, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये तो अचानक ऐसा प्रपोजल आया, मैं खुद चौंक गई। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोच के कहती हूँ। फिर थोड़े दिन के लिए मैंने सोचा, अपनी बड़ी बहनों से राय ली, अपने दोस्तों से राय ली, फिर मैंने खुद सोचा कि ये एक इंसान है जिसको मैं काफ़ी बरसों से जानती हूँ और वो भी मुझे जानते हैं। फिर मैंने सोचा इससे अच्छा और क्या हो सकता है, तो मैंने हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई।
1: और बहनों और भाइयों, ये शादी बड़ी ही अच्छी तरह 26 साल तक बरकरार रही। आगे चलकर वहीदा और कमलजीत बेंगलोर में आ बसे और दोनों को खुशियां भी मिली, दो प्यारे बच्चे भी हुए। मगर अफसोस के सन 2000 में कमलजीत अपने हसीन पुरबहार संसार को छोड़कर चल बसे। बहरहाल दोस्तों, फिल्म से उभर कर जिंदगी में ढली हुई इस असली दास्तान मोहब्बत के बाद अब फिर बारी शुरू हो रही है 1964 के हिट गीतों।

बेटी बेटे, और उस साल गीतमाला की वार्षिक संगीत छिड़ी की अगली पायदान पर जो गजब का गीत बजा, उसके साथ तकदीर ने थोड़ी सी नाइंसाफी जरूर कर ली थी। उन दिनों गीतमाला की हर सालाना हिट परेड में वही गीत बजते थे जो उसी साल ज्यादा बजे हों, वरना अगर ये गीत कुछ हफ्तों के बाद बजना शुरू हुआ होता ना, तो वो अगले साल यानी 1965 का टॉप हिट गीत नंबर 1 या फिर टॉप हिट गीत नंबर 2 बन जाता। कौन सा गीत था वो? फिल्म दोस्ती का।

और उस साल की पायदान नंबर 20 पर एक ऐसे बेमिसाल नए संगीतकार उभरे जिनमें शंकर जयकिशन और ओपी नैयर और लक्ष्मी प्यारे तीनों के मिले जुले रंग का संगम था साहब। अफसोस कि उन्हें जरा कम फिल्में मिली मगर हर फिल्म में उन्होंने यादगार तर्जें जरूर दी। नाम था उनका जी एस कोहली और 1964 की वो फिल्म

बहनों और भाइयों, अब जरा दिल थाम कर बैठिए। नंबर 19 पर आने वाली है झलक उस फिल्म के गीत की जिसका नाम मैं पब्लिसिटी के प्रोग्रामों में तालियों के ताल पर यूं अनाउंस किया करता था।

0: बन और भाइयों, ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी के गाए हुए जोरदार गीत तो आपने बहुत सारे सुने हैं, मगर क्या आपने कभी ये सुना है कि रफी साहब को शब्दों की कैसी सलामी दे गए हैं ओपी नैयर?
1: रफी साहब एक नहायत शरीफ, इतने अच्छे इंसान थे कि जितने अच्छे गायक थे उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान थे वो। तो मालिक ने ये बख्शिश तो उनको आवाज में दी, आज तक किसी गायक की आवाज में वो जादू नहीं है जो खनक उनकी आवाज में है। वो वही थे और वही रहेंगे और दूसरा मोहम्मद रफी पैदा नहीं होगा।
0: और साहब यही हमारे रफी भाई 1964 की पायदान नंबर 18 पर भी गूंजे थे फिल्म लीडर में, जिस फिल्म को इंसिडेंटली डायरेक्ट किया था हमारी हसीन हीरोइन रानी मुखर्जी के पिता राम मुखर्जी ने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेंट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, यहाँको विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू: निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबिबिएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेकबुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
2: टुगेदर वी डेलिभर।
3: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। भाई दोस्तों, मुझे भी आजकल काम के हंगामों ने कुछ ऐसे लड़खड़ा दिया है कि मैं भी कभी कभी चक्कर में आकर गलतियां कर दिया करता हूं। अब देखिए, अभी अभी मुझे एक खत मिला है दिल्ली में रहने वाले चंदर नवानी साहब का, जो आज भी रेडियो सिलोन के इतने जबरदस्त हमसफर हैं कि अखिल भारतीय रेडियो श्रीलंका संघ भी चलाते हैं और खुद कई बेहतरीन रेडियो प्रोग्राम भी तैयार कर चुके हैं, और ये गीतमाला की छाव में की पिछली प्रतियोगिता के एक विजेता भी रहे। तो साहब, चंदर नवानी ने मुझे लिखकर टोका है कि पिछले पैक में मैंने महबूब खान की फिल्मों में दो नाम गलत बोल दिए। अनोखी अदा को मैंने कह दिया अनोखी रात, और अनिल विश्वास के संगीत से सजी फिल्म रोटी की जगह मैं बोल गया एक ही रास्ता, और हे बाप रे। तो सॉरी सॉरी बहनों और भाइयों, और थैंक यू चंदर नवानी साहब कि आपने मेरी भूल को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। और भाई, इस सिचुएशन पर तो मुझे बजाना ही पड़ेगा सन 64 की छाओ का वो बड़ा ही खूबसूरत गीत, जिसमें और मिसालों के साथ क्षमा और भूल का भी लाजवाब जिक्र था।

हाँ हाँ हाँ भाई, 1964 में तो इतने जबरदस्त गीत थे जो एनुअल हिट परेड तक नहीं पहुंच पाए, बस छांव ही में रह गए। सुनवा दूं आपको इनमें से कुछ की छोटी छोटी झलकें, जैसे।

दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली, उसके बाद चंद नए गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

104.8.

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने.

0: וואו,
1: זהו נזהו
0: אאוט, אה? שרשת טיילר.

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूँ।

0: बोली त्या तो फिल्म हेर्दाखेरि बोली भनौ न
1: मिति गङ्गुदी मङ्स

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: 104.8.
1: We'll be right back.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं।
1: FM AJ 104.8 MHz.

FM is 104.8.

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। और ये आया पायदान नंबर 30 पर, फिल्म हरिश्चंद्र तारामती का वो एक ही सीधा सादा संगीत जिसका जिक्र मैंने एलपी के नाम के साथ, नीलेश प्यारे के नाम के साथ अभी कुछ देर पहले किया था।

उस साल की हिट पायदान नंबर 29 पर एक हसीना को देखकर चांद ऐसे शर्माया कि उभरी दूर की आवाज।

इस गीत के गीतकार संगीतकार वही थे जिन्होंने हमें चौदहवीं का चांदों वाला खूबसूरत गीत दिया था, यानी रवि और शकील बदायूनी। और वही जोड़ा 1964 की पायदान नंबर 28 पर भी चमका, फिल्म थी जिंदगी।

0: फिल्म जिंदगी के डायरेक्टर थे रामानंद सागर और फिल्म के सबसे सीनियर एक्टर थे पृथ्वीराज कपूर साहब, जिनकी मदद से ही सागर साहब ने फिल्मों में शोहरत पाने का पहला कदम रखा था। इसके बारे में सागर साहब ने एक इंटरव्यू में मुझे बताया था।
1: पृथ्वीराज जी मेरे दोस्त थे, यहाँ आने से पहले वो मेरी किताब में पढ़ चुके थे
0: जी,
1: और मैं उनका दिल दादा था, तो उन्होंने मदद करनी चाही
0: जी,
1: तो मैंने कहा कि मुझे कोशिश कर लेने दो।
0: अच्छा,
1: पृथ्वीराज जी ने फिर मुझे एक कहा कि मेरे लिए एक प्ले लिख दो, एक ड्रामा लिख दो।
0: कौन सा प्ले था वो?
1: कलाकार। वहां मेरी राज साहब से मुलाकात हो गई। वो एक किसी अच्छी कहानी की तलाश में थे, एक पिक्चर बनाना चाहते थे बरसात। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास कोई कहानी है? तो मेरे पास एक नावल था जो मैं लिखना चाहता था, उसका खाका तैयार था 30-40 पेज का। मैंने उनको सुनाया कि एक आइडिया है ये, जो उनको बहुत पसंद आया।
0: और उस पर हिट फिल्म बनी बरसात, जिसके जरिए राज कपूर के करीब आ गए रामानंद सागर। और साहब 1964 के बाद तो रामानंद सागर साहब की कामयाबियों का झंडा बस ऊंचा ही ऊंचा चढ़ता रहा। पहले उनकी अपनी फिल्मों में और फिर टीवी सीरियल रामायण के जरिए। खैर वो तो बाद की बात है, अभी तो ये पूछिए कि 1964 के पायदान नंबर 27 पर कौन साहब सवार थे?
2: मुझे कहते हैं, मुझे

ये फिल्म थी दूल्हा दुल्हन, जिसके संगीत का शंकर जयकिशन ने तो उस साल कमाल ही कर दिया था साहब। गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी की 32 पायदानों में से 13 पायदानों पर उन्हीं की धुनें थी, और उनके पीछे पीछे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला जोड़ा भी लोकप्रियता की रेस में दौड़ने लगा था, अपने जैसे सारे नए नौजवानों का हौसला बढ़ाते हुए और उन्हें पायदान नंबर 26 पर दोस्ती का गीत सुनाते।

0: होती है।
1: अच्छा दोस्तों, पिछले पैक के वॉल्यूम नंबर 19 में जब फिल्म जंगली के जरिए सायरा बानू की एंट्री फिल्मों में जो हुई थी उसका जिक्र हुआ था, तब मैं जंगली के बड़े मशहूर डायलॉग राइटर आगा जानी कश्मीरी साहब की आवाज भी आपको सुनवाना चाहता था, मगर मुझे उनके इंटरव्यू का वो टेप वक्त पर मिला नहीं, अब जाकर मिला है। तो जरा सुनिए कि सायरा बानू को डायलॉग बोलना सिखाने में आगा जानी कश्मीरी साहब ने कैसे मदद की।
2: फिल्म अलाया स्टूडियोज में जब जंगली लिखने गया तो क्या देखता हूं कि एक जवान खूबसूरत लड़की नीची नजरें किए मेरी तरफ खिरामा खिरामा बढ़ी चली आ रही है। मैंने कहा आदाब अर्ज़ है, सिर्फ नाजुक सा हाथ उठाकर चांद से माथे पर रखा और कहा आगा साहब आप मुझे डायलॉग सिखाएंगे, मैं जंगली की हीरोइन सायरा बानो हूं। मैंने कहा जरूर। फरमाने लगी लोग तो कहते हैं कि मैं काम नहीं कर सकती, तस्वीर फ्लॉप हो जाएगी।
1: वो जरा नहीं थी ना आगा साहब, उन्हें कैसे पता चलता कि जिस फिल्म में आगा जानी कश्मीरी साहब का कलम लग जाए वो फ्लॉप कैसे हो सकती है।
2: जंगली रिलीज हुई और सायरा बानो टेरिफिक हिट हुई।
1: भाई अगर आप आगा जानी कश्मीरी साहब की लिखी हुई या डायलॉग से सवारी हुई फिल्मों के नाम सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, जैसे पुरानी फिल्मों में हुमायूं, अनमोल घड़ी, औरत, अमर वगैरह, और फिर 50 से शुरू होकर आज के वॉल्यूम के साल यानी 1964 के आते आते चोरी चोरी और जंगली के अलावा लव इन शिमला, ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो, गजल, जिद्दी और अप्रैल फूल, जिसका एक और गीत उस साल नंबर 25 पर बजा। और सुनिए उसमें आगा जानी ट्रेंड सायरा बानू ने दो चार शब्द कैसे मजे में बोले थे। और वैसे वो गीत

0: बनाया।
1: अरे बाबा, आजकल तो न जाने कैसे कैसे और कितने कितने लोग जनता को अप्रैल फूल बनाने यानी बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, और इससे कितना नुकसान हो रहा है हर तरफ। तो मैं उन सब से कहूंगा कि भाइयों, झूठ फरेब छल कपट छोड़िए, प्रेम का रास्ता पकड़िए, फिर देखिए कि सारी जनता आपको अपने सीने से लगाकर क्या कहती है आपसे।

0: 1964 की गीतमाला वार्षिक पायदान नंबर 24 पर बजा था फिल्म आपकी परछाइयां का ये गीत। इसके संगीतकार मदन मोहन और गीतकार राजा मेहदी अली खान ने मिलकर ऐसे कई बड़े ही जज्बाती गीत रचे थे, लेकिन इन दोनों में हंसी मजाक और छेड़छाड़ का जो धमाकेदार रिश्ता था ना, उसके बारे में सुनिए कि मुझे मदन भैया क्या बता गए थे।
1: अमीन साहब, खाने पकाने का शौक हम दोनों को था, इसलिए रात का खाना इकट्ठे पकाते थे और खाते थे और उसके बाद काम करते थे
2: जी।
1: रात को जब राजा साहब काम करके चले जाते थे तो मैं देखता था गाना, और सुबह सुबह फिर मैं उनके घर पर पहुंच जाता था।
2: हाँ।
1: और अगर मुझे गाना पसंद ना आता था तो मैं उनकी रसोई में जो एक चिमटा पड़ा हुआ था,
2: चिमटा,
1: वो उठा लेता था। जी हाँ, वही चिमटा उठाकर मैं राजा से कहता कि शाम तक देखो राजा गाना नहीं हुआ तो ये चिमटा जो है ये तुम्हारे बदन पर बरसेगा।
2: अरे बाप रे, अच्छा।
1: और राजा ने मेरा एक नाम चिमटा मार खान भी रखवा दिया था।
2: चिमटा मार खान।
1: सब लोग मुझे श्री राम से पुकारते थे।
0: मगर भाई जब गीतों की बारी आती ना तो मदन और राजा का सारा धूम धड़ाका भावनाओं की गहराई में डूब जाता।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। अच्छा दोस्तों, शायद आपके मन की निगाहें इंतजार कर रही होंगी कि आज गीतमाला की छाओं में कि अगली प्रतियोगिता

प्रतियोगिता यानी अगले कंपटीशन का जिक्र कब आता है? मगर भाई, एक तो विजय किशोर दुबे साहब के चले जाने से मेरा मन कुछ बोझल सा हो गया, और फिर इस पैक में यानी इस पैक के 5 वॉल्यूम्स में आपको सुनवाने के लिए फिल्मी लोगों के अनोखे इंटरव्यूज और निराली यादों का इतना सारा खजाना हाथ लग गया कि प्रतियोगिता का सिलसिला मैंने अगले पैक तक टाल दिया है। और फिर 1964 के छाव के गीत भी तो बहुत सारे निकल आए हैं, बड़े लाजवाब गीत, ज्यादातर तो बड़े मीठे मधुर मोहब्बत भरे गीत, मगर एक गीत मजेदार मुस्कुराहटों से महकता हुआ है।

जो गेंदवा कहलाए हैं। तन पर जहां गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए हैं। अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे फुल गेंद वाल मारो न मारो फुल गेंद।

0: हमारो लगत कर जवाम चोट कर जवाम चोट कर जवाम चोट।
1: मगर साहब हमारे पास टाइम टाइम टाइम कहाँ है कि हम रुकते रुकते रुकते चलें घिसे हुए ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह। और हमें उस साल की छांव भी तो फिर कह रही है कि आओ ना हमारे पास। और अगर ना

0: बहनों और भाइयों, अगर आपने फिल्म का नाम छपे हुए कवर पर देख लिया है तो आपको याद आ गया होगा कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी लाजवाब था, मगर वो भी सालाना प्रोग्राम तक नहीं पहुंचा था। लेकिन बहनों और भाइयों, वो मैं आज नहीं सुनवाऊंगा। आइए बढ़ें आगे। उस साल की छांव में एक बहुत प्यारा गीत उस फिल्म का भी छुप गया था, जिसके हीरो थे कॉमेडियन महमूद। मगर अभी अभी मैंने उस फिल्म की संगीत निर्देशिका उषा खन्ना को फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उस फिल्म शबनम में महमूद ने कॉमेडी के साथ साथ रोमांस भी बड़ा तगड़ा किया था। जी हाँ, हमारे महमूद भाई रोमांस में भी तो उस्ताद थे, यानी जिंदगी में भी।
1: मैं

0: न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

बहनों भाइयों, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी फिल्म में एक दूजे के साथ रोमांटिक रोल करने के बाद हीरो और हीरोइन में प्यार हो गया और फिर दोनों की शादी भी हो गई। एक फिल्म उस साल आई थी शगुन, जिसकी हीरोइन थी हसीन वहीदा रहमान और नए हीरो थे कमल जीत। और शूटिंग के दौरान कमल जीत वहीदा को अपना दिल दे बैठे। भाई मैंने फिल्म शगुन तो देखी नहीं थी, मगर उसके गीत इतने प्यारे थे कि सुनकर किसी का भी प्यार जाग जाए। और इस गीत का तो लगता है कि सीन भी बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही रोमांटिक होगा।

0: हाँ तो मैं आपसे कह रहा था ना कि फिल्म शगुन के बनते बनते हीरोइन वहीदा रहमान पर नए हीरो कमलजीत फिदा हो गए, मगर आप जानते हैं मैं नौ उस रोमांस को शादी तक पहुंचने में 10 साल लग गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी देर क्यों लगी है? भाई ये मैं कैसे बताऊं, आप खुद वहीदा रहमान से सुन लीजिए ना।
1: मैं और कमलजीत ने एक फिल्म में काम किया था, वो फिल्म का नाम था शगुन। उसके बाद उन्होंने फिल्म में छोड़कर कनाडा चले गए थे अपने बिजनेस के लिए, मगर हर साल हिंदुस्तान आया करते थे और जब भी आया करते थे मुझसे ज़रूर मिलते थे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मगर शादी से 6 महीने पहले उनको बॉम्बे आना पड़ा और एक साथ 6 महीने उनको रहना पड़ा। उस दौरान में वो अक्सर मिला करते थे मुझसे। एक दिन अचानक आके कहने लगे, देखिए मैं आपको बहुत बरसों से जानता हूँ और मैंने सोचा है कि बड़े शर्मा के कहने लगे। हाँ, मैंने कहा कहिए क्या सोचा है आपने, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये तो अचानक ऐसा प्रपोजल आया, मैं खुद चौंक गई।

0: मैंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोच के कहती हूँ। फिर थोड़े दिन के लिए मैंने सोचा, अपनी बड़ी बहनों से राय ली, अपने दोस्तों से राय ली, फिर मैंने खुद सोचा कि ये एक इंसान है जिसको मैं काफ़ी बरसों से जानती हूँ और वो भी मुझे जानते हैं। फिर मैंने सोचा इससे अच्छा और क्या हो सकता है, तो मैंने हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई।
1: और बहनों और भाइयों, ये शादी बड़ी ही अच्छी तरह 26 साल तक बरकरार रही है। आगे चलकर वहीदा और कमलजीत बेंगलोर में आ बसे और दोनों को खुशियां भी मिली, दो प्यारे बच्चे भी हुए। मगर अफसोस के सन 2000 में कमलजीत अपने हसीन पुरबहार संसार को छोड़कर चल बसे। बहरहाल दोस्तों, फिल्म से उभर कर जिंदगी में ढली हुई इस असली दास्तान मोहब्बत के बाद अब फिर बारी शुरू हो रही है 1964 के हिट गीतों।

बेटी बेटे, और उस साल गीतमाला की वार्षिक संगीत छिड़ी की अगली पायदान पर जो गजब का गीत बजा, उसके साथ तकदीर ने थोड़ी सी नाइंसाफी जरूर कर ली थी। उन दिनों गीतमाला के हर सालाना हिट परेड में वही गीत बजते थे जो उसी साल ज्यादा बजे हों, वरना अगर ये गीत कुछ हफ्तों के बाद बजना शुरू हुआ होता ना, तो वो अगले साल यानी 1965 का टॉप हिट गीत नंबर 1 या फिर टॉप हिट गीत नंबर 2 बन जाता। कौन सा गीत था वो? फिल्म 2।

उस साल की पायदान नंबर 20 पर एक ऐसे बेमिसाल नए संगीतकार उभरे जिनमें शंकर जयकिशन और ओपी नैयर और लक्ष्मी प्यारे तीनों के मिले जुले रंग का संगम था सब। अफसोस कि उन्हें जरा कम फिल्में मिली मगर हर फिल्म में उन्होंने यादगार तर्जें जरूर दी। नाम था उनका जी एस कोहली और 1964 की वो

बहनों और भाइयों, अब जरा दिल थाम कर बैठिए। नंबर 19 पर आने वाली है झलक उस फिल्म के गीत की जिसका नाम मैं पब्लिसिटी के प्रोग्रामों में तालियों के ताल पर यूं अनाउंस किया करता था।

0: बनौर भाइयों, ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी के गाए हुए जोरदार गीत तो आपने बहुत सारे सुने हैं, मगर क्या आपने कभी ये सुना है कि रफी साहब को शब्दों की कैसी सलामी दे गए हैं ओपी नैयर?
1: रफी साहब एक नहायत शरीफ, इतने अच्छे इंसान थे कि जितने अच्छे गायक थे उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान थे वो। तो मालिक ने ये बख्शिश जो उनको आवाज में दी, आज तक किसी गायक की आवाज में वो जादू नहीं है जो खनक उनकी आवाज में है। वो वही थे और वही रहेंगे और दूसरा मोहम्मद रफी पैदा नहीं होगा।
0: और साहब यही हमारे रफी भाई 1964 की पायदान नंबर 18 पर भी गूंजे थे फिल्म लीडर में, जिस फिल्म को इंसिडेंटली डायरेक्ट किया था हमारी हसीन हीरोइन रानी मुखर्जी के पिता राम मुखर्जी ने।

भाई दोस्तों, मुझे भी आजकल काम के हंगामों ने कुछ ऐसे लड़खड़ा दिया है कि मैं भी कभी कभी चक्कर में आकर गलतियां कर दिया करता हूँ। अब देखिए, अभी अभी मुझे एक खत मिला है दिल्ली में रहने वाले चंदर नवानी साहब का, जो आज भी रेडियो सिलोन के इतने जबरदस्त हमसफर हैं कि अखिल भारतीय रेडियो श्रीलंका संघ भी चलाते हैं और खुद कई बेहतरीन रेडियो प्रोग्राम भी तैयार कर चुके हैं, और ये गीतमाला की छाओ में की पिछली प्रतियोगिता के एक विजेता भी रहे। तो साहब, चंदर नवानी ने मुझे लिखकर टोका है कि पिछले पैक में मैंने महबूब खान की फिल्मों में दो नाम गलत बोल दिए। अनोखी अदा को मैंने कह दिया अनोखी रात, और अनिल विश्वास के संगीत से सजी फिल्म रोटी की जगह मैं बोल गया एक ही रास्ता, और बाप रे। तो सॉरी सॉरी बहनों और भाइयों, और थैंक यू चंदर नवानी साहब कि आपने मेरी भूल को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। और भाई, इस सिचुएशन पर तो मुझे बजाना ही पड़ेगा सन 64 की छाओ का वो बड़ा ही खूबसूरत गीत, जिसमें और मिसालों के साथ क्षमा और भूल का भी लाजवाब जिक्र था।

0: भाई 1964 में तो इतने जबरदस्त गीत थे जो एनुअल हिट परेड तक नहीं पहुंच पाए, बस छाव ही में रह गए। सुनवा दूं आपको इनमें से कुछ की छोटी छोटी झलकें, जैसे
1: अब

1048.

महाराष्ट्र की फरमाइश राग मलकोंस रागनी एक नानी अभी बंदिश संभाली दूं।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

एक पात्र ऐसा जो किसी को नहीं चाह रहा, वो कौन है? एक पात्र ऐसा है जो चारों को नहीं चाह रहा, न अर्थ चाह रहा, न धर्म चाह रहा, न काम चाह रहा, न मोक्ष चाह रहा।

0: सुनने की बात, शायद आपको मालूम होगा, नहीं है तो बता देता हूँ। भगवान राम का वनवास हो गया जी, मनाने के लिए भरत जी जा रहे हैं। जब गंगा के तट पर खड़े थे तो गंगा इतने प्रसन्न हो गई भरत के प्रेम को देख करके।
1: अपलोडेड बाय मेवाड़ी क्लासिकल भजन।
0: गंगा ने कह दिया, भरत आज मैं तुम्हारे ऊपर इतनी प्रसन्न हूं, तू चाहे जो मांग मैं सब कुछ दे सकती हूँ। कि जरा माँ मुझे बताओ तुम्हारी दुकान में कौन कौन सा सामान है, जरा ये तो बताओ। कि भरत अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों को देने वाली हूँ, बोलो क्या मांगना चाहते हो। मानो भरत जी ने कह दिया, सब साकर मुझे चारों की जरूरत नहीं। अरे अरे भरत, पूरा संसार इसके पीछे पड़ा हुआ है।

मुझे अर्थ में अनर्थ होता देखा है। अर्थ में अनर्थ किसे देखा? अर्थ के पीछे मेरे भाई का वनवास हुआ। अगर अर्थ का चक्कर नहीं होता तो मेरे राम जी का वनवास नहीं होता। इसलिए मुझे अर्थ नहीं चाहिए। तो धर्म ले लो। वो धर्म किस काम से? जिससे मेरे पिताजी मरे। मुझे वो धर्म की भी आवश्यकता नहीं है। धर्म के पीछे मेरे पिता मर गए भाई। हे मां मुझे तेरा धर्म भी नहीं चाहिए। तो काम ले लो। अरे अरे काम का तो चक्कर था। अगर काम के चक्कर में मेरे पिताजी नहीं आते, केके के चक्कर में नहीं आते, तो शायद वनवास नहीं होता। इस काम ने तो क्या सब कुछ किया। मुझे काम भी नहीं चाहिए। तो धर्म मोक्ष ले लो। सगुण उपासना मोक्ष चाहती नहीं है। इसलिए मुझे चारों की आवश्यकता नहीं है।

ऐसी धारणा है कि मृत्यु के बाद मनुष्य स्वर्ग या नरक में जाता है अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए। लेकिन सत्य यह है कि स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही है। प्रत्येक मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही

0: बिहान को 5 बजी सकते अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को नियमित प्रसारण आरंभ हो प्रसारण प्रारंभ में आज को पंचांग
1: आज श्री सालिभानीय साखे 1948 सृष्टितो गताब्दा 1955-88 5127 कलेर गताब्दा 5127 60 संवत्सर मध्ये 54 संवत्सर रौद्र नामक संवत्सर नेपाल देशीय सम्बत 1146 विक्रम सम्बत 2083 साल भाद्र महिनाको 21 गते आदित्यवार तदनुसार सेप्टेम्बर महिनाको 6 तारिक सन 2026 भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी तिथि आद्र नक्षत्र शिव आनन्दादि योग बब कर्ण ध्वाक्ष योग आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा अवस्थित श्री सूर्य दक्षिणायण यो महिना श्री सूर्य सिंह राशिमा अवस्थित आज काठमाडौँमा अहिले 5:45 सूर्योदय हुनेछ
0: अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम आराधना
1: शुभ प्रभात एवं नमस्कार यो प्रभात कालिनी कार्यक्रम आराधनामा म प्रस्तोता युवेन्द्र अब आजको यो कार्यक्रम आराधनालाई सधैँ अगाडि बढाउँदै छु हस्त दर्शन एवं भूमि वन्दनाबाट

0: अर्को जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निःशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार, गुर्जुको चौक, काठमाडौँ।
1: Together, we deliver.